हर की पूजा दुर्लभ है संतो। हे संत जनो, हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है, पर कहिंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर दे खान,

ख्याल बड़ा सुंदर है, हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्योंकि हरि वाहिगुरु दे नाम तो बिना सब कुछ मैला है। ए तन मैला, ए मन मैला, ए तन मैला, ए संसार मैला, इस संसार दा विहार मैला। आ तुसी देखो हर पासे मैल है, इसलिए सानू सतगुरु जी उपदेश देंदे कहंदे ने हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, तो किवें पूजा करेगा, की पूजा ली चढ़ावेगा, क्योंकि सब कुछ तो मैल है, सब कुछ मैल है, सुचा की है, क्योंकि असी वो चीज परमात्मा की दरगाह विच अर्पण करनी है जो सुचा होवे। इसलिए सब तो पहले आपा तन सुचा करने, फिर मन सुचा करने, फिर तन सुचा कीता जांदा है, फिर गुरु दे अर्पण हुंदा है। इसलिए आपां उद्यम की करने हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा, क्योंकि गुरु दी पूजा विच बैठना है, गुरु दा सिमरन करना है, अपने आप नू अरोग बना ले, पहले अपने आप नू सुचा कर ले, जिस तक सुचा नहीं तू हुंदा ते गुरु दी अर्पण की करेगा। हर बिन सब किच मैला है संतो, हर बिन सब

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा जाए फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जो मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करन दी एक मर्यादा है, एक नियम है, एक ला एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा वह पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहिंदा नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहा हां। कई लोग पगटावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है प्रगटावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तू पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन कर्म वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

शब्द मरे मन निर्मल संत। इस मन नु मारना है शब्द नाल। जदों असी इस मन नु शब्द नाल मार लांगे ते मन निर्मल हो जाएगा। बस जिस वेले मन निर्मल हो गया ए पूजा थाए पाई, ए फिर पूजा थाए पै जाएगी। बस कोशिश करिए इस मन नु

सच्चे पातशाह। प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए। जदों तक मेरे ध्यान दे विच वाहिगुरू तेरा नाम तेरी याद रहिंदी है, उदों तक मैं अपने आप नूं अलाइव महसूस करदा हां, जिंदा महसूस करदा हां।

तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आते हैं अमृत प्रिया का नाम। प्रिया प्यारा कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च, नाम प्यार। कहते हैं

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है, साधी ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारिया के नाल ही बनानी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहाय

बिन गुर प्रेम ना पाई है, किंतु गुरु तो बिना जो प्रेम वस्तु है ये नहीं प्राप्त हो सकती। तो सारी दुनिया के जितना भी आख्या जाता है ना कि मैं तेनू प्यार करता हाँ, मैं तेनू प्यार करता हाँ, इत आदि शब्द जो वरते जाते हैं ये सारे ही फेक हैं। कोई किसी नू प्यार नहीं करता, क्योंकि जितनी देर तक वो प्यार अंदर पैदा ही नहीं होया। हाँ, असी किसी ना किसी तो सानू कोई जरूरत पूरी होंदी है, उस जरूरत पूरी होने करके असी उस नू प्यार करते हैं। जो वो जरूरत पूरी ना हो तो साड़ा प्यार बदल जाता है, नफरत च बदल जाता है। सो साड़ा प्यार किसी ना किसी नीड दे उत्ते बेस्ड है, वो नीड पूरी होंदी है तो असी उस नीड नू प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी आखते हैं प्यार एक आत्मक अवस्था है, प्यार एक स्टेट ऑफ माइंड है, प्यार एक आत्मा दी एक क्वालिटी है, प्यार एक आत्मा दी सुगंधी है, प्यार एक आत्मा दा स्वभाव है। कहते ओ गुरु तो बिना प्राप्त नहीं हो सकता, बिन गुर प्रेम ना लभी। अगे आखते हैं गुरमुख सच्ची आशकी, ऐ लाइन कह के समाप्त कर रहा मैं। गुरमुख सच्ची आशकी, सच्ची आशकी सच्चा प्यार, जित प्रीतम सच्चा पाई है, जिस प्यार दे नाल ओ सच्चे प्रीतम वाहिगुरु नू असी पा सकना है, ते उसने सानू प्यारा लगना है, ते उसका नाम सानू प्राप्त होना है। कहते हैं ओ आशकी जो है गुरमुख सच्ची आशकी, जित प्रीतम सच्चा पाई है, अनदिन रहे आनंद नानक सहज समाई है। कहते जेड़ा प्यार पा के दिन रात ब्लिस दे विच रहना है, सहज दे विच रहना है। कहते हैं सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाइए। सारे इस पंक्ति नू बोलो, सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाइए, सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाइए। सो अज का कीर्तन इत्थे तक पहुंचा है कि सानू जरूरत है उस ही किस्म दी प्यार दी, जिस किस्म दा महाराज जी दा उस नाम वाले दे नाल प्यार है। महाराज जी का उस नाम वाले दे नाल प्यार है, उस दे नाम दे नाल प्यार है, क्योंकि जिस नाल प्यार होवे उसका नाम प्यारा लगता है, उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है, उसका हर कर्म प्यारा लगता है। तो साड़ी जाचना यह है कि सानू प्यार किवें प्राप्त होवे ताकि सानू भी नाम प्यारा लगे, तो सानू उसकी हर वस्तु प्यारी लगे, उसका हर कर्म प्यारा लगे, वो प्यार सानू किवें मिले। इस तस्वीर दे विच इस पॉइंट ते जाके गुरु महाराज जी गुरु नू विच लैके आ रहे हैं कि विदाउट गुरु दैट लव इज इम्पॉसिबल, कि गुरु तो बिना वो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ही है जिसनू वो तमाम वजह का पता है कि साडे अंदर प्रेम क्यों नहीं है, अते गुरु ही है जिसनू पता है कि इन्हां दे अंदर प्रेम किस तरह पैदा करना है, जहर नू किस तरह निकालना है, पत्थरां नू रॉक्स नू किस तरह निकालना है। क्योंकि बाणी आखदी साडे अंदर ते पांच बड़े वड्डे वड्डे भूत रहिंदे हन, पांच भूत सबल है देही, इस देही च पांच बहुत शक्तिशाली भूत रहिंदे हन, उत्थे प्यार कित्थे होएगा। कोई उन्हां भूतां नू बाहर निकाले, कोई उन्हां पत्थरां नू बाल निकाले, कोई जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल नू बाहर निकाले, पहलां उस नू प्यार दे काबल ते बनाए। प्यार इतनी अमलीक वस्तु है, गुरु महाराज जी कहते हैं वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है। अंदरली पहला सफाई, फिर गुरु प्रेम का ही सागर है, ते वो प्रेम साडे अंदर पैदा कर सकेगा। जब साडे अंदर प्रेम पैदा करेगा, जिथे नाम वाला है उस दे नाल मिलाएगा, उस मिलने च उस नाम वाले दे नाल प्यार होएगा, ते उसका नाम प्राप्त होएगा, ते उस दे नाम दे नाल भी साडा प्यार पाएगा। बाकी दी विचारा कल नू इत्थों ही कंटिन्यू करांगे। आओ इस पंक्ति नू गा के जो कुछ कहा गया है इस नू याद रखने की कोशिश करनी, ते कल नू समय से दर्शन देने। मेरे प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए, एक प्यार दी एक मॉडल है, एक प्यार दी इंतहा है। कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा नाम मेरे ध्यान च है तो मैं जीना हाँ, वरना कहते मैं तो जीना भी मैनू मुश्किल लगता है। प्यार नाल सुनो और गाओ।

any number. And something surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी वो कड़ी मंग नानक को ब्रह्म माया कर सच देवो क्योंकि सच सदा रहने वाली कूड़ की खुटे नानका कूड़ में हो गया पूरे पदार्थ में भी नहीं रहे तो इस वास्ते नाम पूर्ण निकुटे नाम का औरंग सच और सिर्फ भी है दास पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा है उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान दुनिया सबका हाँ जी रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भजन फरमाते सच्चे मार्ग चल देना उस करे सच जरा सच पिया बोल रहे और दुध पिया जरा झूठ पिया बोलता है और जहर पिया सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोल जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर वो राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सामू जरा अम फल है वह प्राप्त इसे तरह उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईसर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरुमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट की जो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धिया त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा महाराज ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह बनाए दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुरना है महाराज पता दसो कितने वीर उसके बहुत किने सब बॉम्बे जाना मीलों का पता
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ

बिन बाजे कैसो नटकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरछे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता।

गोविंद ना भजै अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

मन क्यों बहरा करेगा। गुरु ग्रंथ साहब के प्यार विच एक बारी सारे आखो सतनाम। तकरीबन छेवां हफ्ता या सतवां होएगा। एक प्रकरण धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में साडा मन विक जे। छे विशेषताइया आप जी नाल गुरु सांझियां करा रहा है। पांच आप जी सरवण कर चुके हो, अज छेवीं दी बारी है। कोई संगत नवी आई हुई है, केवल बोल के लंघदे आ। पहलियां पांच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पहली विशेषताई खालसा जी धरती के समय समय अनुसार जितने भी अवतार आए, मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, होर भी द्वापर दे, त्रेते दे, होर भी समय अनुसार अपनी ड्यूटी दे के धरती तो चले गए। एक गुरु नानक दसवें जामे तो बाद भी धरती तो गए नहीं। दसवें जामे तो बाद शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिक गए। तरस खा के दुनिया दे बेड़े बने लाण दे लई कि ओह जागदी जोत है, ओहो हाजर नाजर जोत।

असंगत सारी शब्द पढ़ रही होवे तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया दसां पातशाहियां चो जिथे भी शरदा होवे चरणा च मन रखिया होवे सिद्धियां गल्लां हुंदियां ने उस वेले एक बाणी है जिहड़ी गल्लां करांदी है केवल किते स्रोता बनन दी जाच आ जाए बाकी ग्रंथ रब दी गल करदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी रब नाल गल्लां करांदी है। तीसरी विशेषता आई ना दीपक राग ना मेघ राग सतगुरु ने दोनों नूं जगह नहीं दिती सानू सड़क बख्शीए जे तेरी जिंदगी च खुशी आ जाए ते एहो जा मेघ नहीं मैनू चाहिदा भंगड़िया वाला कोई भाणा वरत जे ते अत सोग रोने धोने वाला नहीं चाहिदा दीपक भी नहीं जोड़ आखो सतना हाँ ये समय दे मशहूर राग सन पर महाराज ने इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब च जगह नहीं दिती डिटेल सरवण कर चुके हो। चौथी विशेषता इक्योंकार तो 18-10-20 तक किधरे भी हों जगह नहीं दिती नानक सद होवे सृष्टि का मालक सज्जन ठग वर्गिया नूं एक नदर नाल संत बनावण वाला पर अपने आप नूं की कवे मैं कुत्ता नानक सद नानक गरीब नानक दवाना नानक विचारा होर भी कितने लफज वेख लो किड्डी बड़ी शीशा है साडे अगे अजे भी मुंह ना वेखी है नानक सब नानक दीवाना नानक बताला नानक गरीब नानक दास नानक विचारा अदास ने एक नकली संत वेखे सन वो गड्डी कीर्तन जदों करन आंदे सी साज भी लियांदे सी नाल अपना गद्दा लेके आंदे सी पहले गद्दा लगना उन्हां दा बखरा फिर साज खुलने मैं कह के शीशा गुरु ग्रंथ साहिब दा वेख्या हुंदा ते गुरु नानक दे गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च गद्दा ला के बहना आखो सतनाम ओ जिन्हां ने शीशा वेख्या बाबा नंद सिंह वर्गे टोया पुट के बहना मैं संगत दी भी बराबरी नहीं कर सकता जे सिख नहीं बनिया मैं कहंदे एक सवास बिरथा नहीं गल ते है भी जो विशेषताइयां चो शीशा नाल नाल वेखना है भाई जिन्हें अपनी जिंदगी च हां नूं नहीं मारिया वो इन्ना जरूर अंदाजा ला लवे कि गुरु नानक दे घर विच उहदा अजे जन्म भी नहीं होया ये ते कच्ची कलास है शुरुआत गुरमत रिदे गरीबी आवे एक ओंकार तो 18-10-20 तक कितरे भी हों जगह नहीं ये विशेषता ही है। ते पंजवी विशेषता ही तुसी पिछले वीरवार सरवण कीती है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गल्लां भी करदे ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ

लागू। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो, सुख दुख दोनों समकर जाने और माने पुमाना, हर कसोग ते रह अतीता तिन जग तत् पिछाना, उस्त निंदा दोते आगे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना, जन नानक खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो, पहला मरन कबूल जीवन की छड़ आस, होए सपना की रैन का ता आओ हमारे पास।

बानी के बृहत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हों बचना का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे कितां दा जोड़ नहीं साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उना जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

स्वाति भून से पीछे प्या तड़पता है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है, मेरे पातशाह ते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

साहब उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू नाम जपन वालिया नू सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना की जाए शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनिया रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंतो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत दयारे, ये मेरे मालका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निरे मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आने ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चातक ने पबिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पाछा मेरा मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। सेवा मिल गई है तो तरी तदे का मार्ग मकसद गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए कदो भागा वाला दिन चले धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही गंगा राम की सेवा थाए करा सामान क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता नहीं आप खुश रही दुख की एक घड़ी आ जाए कि नहीं आ जाए पता ही नहीं लगे किस तरह से यही है मान गुरु अमरदास पातशाह आप सारे गुरु मार्ग ने मेहनत की थी तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का भी करो इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए पता गंगा राम के सदके सानू ही दीदार का किरका मिल जाए फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु कारण किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी कारण तन मन धन ना जिसने भी सेवा की थी है अदूर फरमाते जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगा राम की कामना किस तरह गुरु ने सकते अमृत साढ़े पाई साढ़े जीवन का एक आशा जी अमृत वेला सच नाम बड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है वो उसद की कल शाम समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो गुरु नानक पातशाह खाने सामने पूर्णमासी गुरु ने मान बता पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश ताइयो बाबा ने उसे 24 घंटे का सत्संग है डेली कोई आए जाएगा पर पूर्णमासी का समाज खास होता है दास इंडिया विच हो बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को भी जुड़े हुए हो थोड़े दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावगा सुरत नारंग सर पहुंचा के दर्शन कर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सेवा करो जिस गुरु ने सानू ते दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए ते एही अरदास करिए भले अमरदास गुरु तेरे तेरी ते तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह पीता से कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां पे माया कई रूप धार के भी छलदी किथे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए आखो सही गुरु नु पा गया जीवन सारे मिल के करिए उस तो प्राप्ति कर गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम सारे गुरसिख माई पाई अनुगुरु राम दा अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।

ओंकार सतगुरु प्रसाद पाठ पढ़ो और वेद विचारो मन पयंगम साधे पंच जना सो संग न कुछ्यो अधिक अहंग बुद्ध बादे पाठ पढ़ो और वेद विचारो निवल पयंगम साधे पंच जना सो संग न कुछ्यो अधिक अहंग बुद्ध बादे।

तड़पा तीरे हो लगन फिरो बन माही तट तीर तब तटी पमियो दुखदा सुख कहनाही मन कामना तीर्थ जाय बसियो शिव करो ताराए मन की मैल न उतरे ये लख जतन कराए संत कामनी हैवर गैवर बहुत दान दतारा अनबद्धर तुम बहु अर्पय नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन जंगा।

कीर्तन से हो मन राता तेरो सेवक यह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन से हो मन राता। वाहेगुरु जी का।

करके अर्थात समुद्र की मत कहो काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपाण न बिनती काल कृपाण न बिनती ना तो तुमको सब नय कर बेसुमार भे अंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे कूट बराद

जिस तरह के भगत कबीर साहब बयान करते हैं, राम भगत अणियाले तीर, ये प्रेमा भगती दे अणियाले तीर ने। इन्हां तीरां दा दर्द या प्रभु जानदा है या फिर वो जिहड़े प्रभु नाल

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जिहदी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल, पत्तियां निकल आईयां। ता इस बच्ची ने कपड़े दी एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लैके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां नू मत्था टेक के ए फुल भेट करना। इस बच्ची दे मन दी ए भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नू भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वल देखिया, सोहना फुल खिड़दे है, उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणां सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणां फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणां विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जड़ा फुल

हाथ जोड़ के बैठी रही। फिर उठी, बाल्टी लाके रोज की तरह पानी लेन चली गई। दूसरे पासे बाग दा मालक जसवंत राय बाग दी सैर करन आया। फुल तां होर भी बड़े सन, पर जद इहदी निगाह इस चकोदरे वल गई, अपने नौकर नूं कहण लगा, कामिया फुल ते होर भी बड़े ने, पर इहो जिहा फुल सारे बाग विच नहीं, जा ए चकोदरा तोड़ के लिया। ओ कामा अपने मालक दा हुक्म मन के फुल तोड़न वास्ते तुरिया। ओ बच्ची जड़ी दूर पानी पई भरदी सी बाल्टी विच, उसने नौकर नूं फुल वल जांदा देखिया ते समझ गई कि नौकर फुल तोड़न चले। इधर नौकर ने फुल नूं हाथ पाया फुल तोड़न वास्ते, उधर उस बच्ची ने उची सारी एक तरला लिया

फुल ना तोड़ी इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी तरला सी कांबे दा ढिरदा कांबे।

कोई फूल क्यों नहीं तोड़ता, तेनू क्या फूल तोड़, काम ही नहीं। फिर हाथ वधाया फूल तोड़न वास्ते, हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती, ज्यों उथू भजी कहिंदे आ रही है हाय ना तोड़, हाय ना तोड़ वीरवे, ते कामा उहदा हाथ

या उस लड़की का? तेनू क्या फुल तोड़? मालक दा हुकम, कामे ने ते मनना है। उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया, बच्ची भी कोल पहुंच गई। इधर कामे ने फुल तोड़िया, उधर उस बच्ची ने आखरी वरी किया, हाय ना तोड़। कहंदी हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया। उस अपने महल नू मुड़ पिया, पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल फड़े है, ओ भी तुरदा जा रहे है। पर उस नू इस तरह जापदा है जिवें फुल विचों इको ही आवाज आ रही है, हाय ना तो, हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा, कामे ने ओ फुल सामने रखिया, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। कहंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया। कहंदा जा रहे है, मैं अपराध कीता, फुल नहीं तोड़िया, एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी, नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया, पर उसके कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तो, हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है, ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच। ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पाके कर लै गया। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है। देव सिख एदी घर वाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई, सारा दिन बीत गया, पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय, धन पदार्थ बहुत है, गुरु तू बेमुख है, अमृत नहीं छकिया, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता। इन्हां ने हथियार चुके, ये लड़ाइया लड़दे ने, इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं, ते बेमुख होए है। पर अज इस नू चैन नहीं आ रहा। रात पई, जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया। हे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने, किसे भी जात दे, किसे भी मजहब दे, ये सारे लोग एक फुल्लां दी तरह ने। कोई किसे रंग दा फुल, कोई किसे रंग दा फुल, फुल आसरे ने, महक रहे ने, खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है, हर फुल दे सराणे एक तुर्क पठान खड़ा है, हर एक फुल दे सराणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली, उन्हां तुरका पठाणा ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता, और हरेक फुल विचों इको ही आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। फुल लहूलुहान हो रहे ने, ए तुर्क पठान फुल्लां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा, एक गर्जवी आवाज आई, खबरदार ठहर जाओ, हुण कोई फुल्लां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी, वो फुल्लां नूं लताड़न वाले ठठंबर गए, कुछ मारे गए, कुछ भज गए, कुछ आप फुल्लां दी तरह निमाणे हो गए, संभल गए, सुधर गए। फिर आवाज आई, रख लिया, रख लिया। ये नजारा देख के
जसवंत राय की अख खुल गई। सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया। जसवंत राय कहन लगा, भलिए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्सिया ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे हां